0: ये बताइए कि शादी के बाद क्या आपने कभी किसी और औरत की तरफ नजर उठा के देखा?
1: मैं सभी औरत की तरफ नजर उठा के देखता हूँ, लेकिन अच्छी नहीं।
0: बिल्कुल अच्छी नहीं। जो अखबारों में अफवाहें होती हैं उसका क्या कहेंगे आप?
1: कुछ सच है, कुछ नहीं।
0: सही भी है।
1: आई थिंक मोस्ट व्हाट यू कॉल द नेम ऑफ मैरिड बैचलर।
0: श्री देवी वाली कहानियां सभी सच्ची हैं।